0: ఛాన్స్ దొరికదో కొయ్య. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 12 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మే కనకలత. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही.
2: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिसरप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है. चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा.
2: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा. इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा. टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है. इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है.
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है.
2: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है. हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे. हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने.
1: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास. अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
3: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है. वर्ष 2006 में 4 देशों के साथ शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल है. भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है. इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया.
1: जी,
3: इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया. कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे. जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादेह से मुलाकात की. श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक

सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों विविध भारती की टीम फिल्मकार विमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य के घर गई, रिकॉर्डिंग की उजाले उनकी यादों के। तो चलिए सुनते हैं आज वही कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्मकार विमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनके लिए सिनेमा सिर्फ एक पेशा या कला नहीं बल्कि परिवार की विरासत भी है। यानी आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महान फिल्मकार बिमल रॉय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य से। वो बिमल रॉय जिन्होंने भारतीय फिल्मों को अलग अर्थों में गढ़ा। तो रिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ
0: जी।
1: मेरे से जो भी होगा पिताजी के बारे में मैं वह कहूँगी
0: जी। बिल्कुल। तो रिंकी जी, हम आपकी आंखों से देखने की आज कोशिश करेंगे महान फिल्मकार बिमल रॉय साहब को। हम बिमल रॉय को एक महान फिल्मकार के रूप में जानते हैं, लेकिन आप उन्हें एक पिता के तौर पर जानती हैं। तो सबसे पहले हम सभी का यही सवाल होगा कि कैसे थे पिता के रूप में बिमल रॉय साहब।
1: मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ
0: जी,
1: क्योंकि पिताजी का जैसा पिताजी मिलना ये छोटी बात नहीं है। और हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महान का वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। एकदम घर में जैसे साधारण हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सब बड़े हुए हैं उनके साथ, उससे हमको पता ही नहीं चलता था कि पिताजी बाहर उनका एक रूप है, बाहर उनका कोई स्टेटस है। और चाइल्डहुड मेरा, हमारा चाइल्डहुड बहुत ही एकदम सुखदायक था
0: जी।
1: बहुत ही बहुत खुश, हम लोग सब बहुत खुश थे। फैमिली मैन थे वो, फर्स्ट फैमिली मैन थे वो। घर में आके उनका पूरा यही बदल जाता था,
0: एक रूप ही बदल जाता था।
1: रूप ही बदल जाता था।
0: मतलब आपके पिता घर पर फिल्मकार नहीं होते थे, एक पिता ही होते थे
1: जी। सही बात है
0: जी। तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके पिता बाकी लोगों से कुछ अलग है, बाहर उनका बहुत बड़ा रुतबा है या वो इतने महान फिल्मकार हैं?
1: ये हमको पता ही नहीं चला कि बाहर उनका क्या रूप है, क्या स्टेटस है, क्योंकि पिताजी को जो उनका बिहेवियर था घर में तो वो एकदम साधारण जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पिता पुत्री का जो रिलेशनशिप होता है एकदम सहज सरल। हम लोग जो बड़े हुए हैं, हम बहुत ही, इस वेले मैं तो एक ही अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, ब्लेस्ड
0: जी,
1: ट्रूली ब्लेस्ड
0: जी। जी, तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन आप लोग थे, और आपकी माता जी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो किस तरह से उनकी फिल्मों से जुड़ी रही, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही
1: जी। लेकिन मेरी माँ जो थी वो एकदम अलग थी, और उनका जो खुद आइडेंटिटी एक था
0: जी,
1: शी वॉज ए फोटोग्राफर, और उनके बारे में सब लोग आजकल जानते हैं। उनका जो फोटोग्राफी है वो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यक्ति के फोटोग्राफ लिया है, जैसे टैगोर का लिया है, और नेहरू का लिया है, इंदिरा गांधी का लिया है। मैंने, मेरी माँ का जो पोर्ट्रेट्स है उसमें इन सब लोगों को नाम जुड़ता है
0: जी।
1: तो पिता, और वो बहुत पिताजी के साथ बहुत ही उनका एकदम बहुत सुंदर रिश्ता था
0: जी,
1: बहुत सुंदर रिश्ता था।
0: क्या नाम था आपकी माँ का?
1: मेरी माता का नाम था मनोबिना रॉय
0: जी।
1: जी,
0: तो वो एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी, और उनका एक व्यक्तित्व था। आपके और भाई बहन भी हैं जो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
1: मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद में दो सिस्टर्स हैं और एक भाई है जॉय, जो अभी देखभाल करता है अपना, मेरा पिताजी का जो लेगेसी है उसके साथ हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं एक साथ
0: जी। जी, तो रिंकी जी, आपको पहली बार उनकी फिल्मों से जुड़ना आपका कैसे हुआ, किस तरह से आप उनकी फिल्मों से जुड़ी? क्या बचपन में आप अपने पिता के साथ उनकी फिल्में देखने जाया करती थी, या उनकी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी उनसे वाकिफ थी, या उनके साथ जाया करती थी, ऐसा कुछ हुआ कभी?
1: नहीं, पिताजी हमेशा, पिताजी का एक कोशिश ये रहता था कि वो फिल्मी दुनिया से हम लोग को अलग रखे।
0: अच्छा।
1: और हम कभी, हमको अगर बुलाते थे शूटिंग देखने के लिए तो कोई गाना वाना शूट होता है तो हमको बुलाते थे, जो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसके लिए बुलाते थे, नहीं तो हम कभी स्टूडियो में जाते ही नहीं थे। उनका अलग ही था कि वो दोनों जो दुनिया है ना, फिल्म का दुनिया और घर का दुनिया अलग था हमारे घर में
0: जी।
1: और वो बहुत एडुकेशनिस्ट थे पिताजी। मैं तो बॉम्बे चली आई, मेरे तब 9-10 साल होगा, तो लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि मैं बंगला सीखूं, क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है
0: जी।
1: तो उन्होंने मेरे लिए सब बंगाली किताब मंगाते थे घर कलकत्ता से, और हमको देखते थे कि हम करते हैं कि नहीं। उनका उत्साह था कि हम बंगला सीखें, बंगला बंगाली कल्चर को भी अपनाएं, इस सब उनका बहुत बहुत उनका देन ये है मेरे जिंदगी में, कि पिताजी के लिए मैंने

0: ये सीखा है, नहीं तो मैं शायद नहीं तो करती थी।
1: पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा,
0: बहुत प्रभाव। हाँ,
1: तो एक बेटी होने के नाते रिंकी भट्टाचार्य पर क्या प्रभाव था, कितना प्रेशर था, कितना दबाव था, तो आप क्या कहेंगी?
0: नहीं, दबाव तो मैं नहीं कहूंगी, पिताजी का जो पूरा कल्चर था उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। कि पिताजी को खाली घर के लिए नहीं, पिताजी को इंडियन कल्चर से बहुत प्राउड थे वो। इंडियन कल्चर, कोई भी कल्चरल, कोई भी कल्चरल ये होता था, वो नेहरू को जानते थे पर्सनली, इंदिरा गांधी को जानते थे पर्सनली। तो ऐसे जो जिंदगी जिसके ये होता है तो उनके लिए तो अलग ही होता ना, एटीट्यूड। हाँ, उनका एटीट्यूड ही अलग था इन सबके बारे में। और हम लोग ने वो ही सीखा है पिताजी। वो बहुत जल्दी चले गए, पिताजी की उम्र बहुत कम था जब चले गए, तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा फिल्म एक जो बनने वाला था वो नहीं बनी, और हमको इसका बहुत दुख है। और जो लिखा था, गुलजार लिख रहे थे उसको, तो उसका उसका नाम था अमृत कुंभ।
1: अच्छा,
0: अमृत कुंभ के ऊपर एक रियल लाइफ स्टोरी था
1: जी।
0: उसको उन्होंने लिया कि उसको वो था, लेकिन उसका शूटिंग करते करते पिता का ये हो गया, कैंसर में भुगते थे, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे
1: जी।
0: उनका हाथ में हमेशा सिगरेट होता था, और उनका ये जो सामने का उंगलियां है ना, उसमें सब सिगरेट निकोटिन का दाग हो गया था इतना। हाँ, तो उससे उनको दुख भरी बात ये है कि उनको वो कोई हम नहीं छोड़ा सके उसको
1: जी।

0: विमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण किया लोगों ने। तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रही होंगे?
1: पिताजी ने जो उनके उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए और उनको उत्साह देते थे और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन विमल रॉय प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी।

0: तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि असली गुरु का हिसाब जो गुरु गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
1: जी,
0: सबको
1: जी। उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे दो बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
0: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
1: जी,
0: सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
1: जी,
0: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से, हाँ। तो इसलिए ना पिता खाली दो बीघा जमीन को लिखा था सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे। तो उसको जो फिल्म बनाया पिताजी उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था,
1: जी।
0: हाँ उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने, और उनको जो फिल्म है आज तो दो बीघा जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है, यहाँ वहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जब बात चली है दो बीघा जमीन की, तो कैसे इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह की घटनाक्रम में फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
0: ये मुझे कभी कभी लगता है कि दो बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी इसका बहुत असर है
1: जी,
0: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के
1: जी,
0: तो वहां से उनको निकाला गया था, तो वो भूल वो उनका जो वो दर्द था वो ट्रेजिडी था, हाँ तो वो भूल नहीं सके थे। तो मुझे लगता है इससे दो बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गई है। इसके लिए ना पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: भूल नहीं पाए कभी भी, हमेशा चाहते थे कि जाएं, हम जब ईस्ट बंगाल चलेंगे वो सोचते थे कि हम जाएंगे वहां पे, तो उसका वो ट्रेजिडी जो था वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया
1: मन में रहा और उसी पीड़ा का परिणाम दो बीघा जमीन के रूप में उतरा
0: जी, जी
1: जी। तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज सहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था। तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
0: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशन कोई नहीं होते थे फिल्म को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो दो बीघा जमीन है ना, ये मैं कहूंगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगी सबसे फिल्म सब फिल्म सुजाता बंदिनी सबको लेके जब लोग देखते हैं ना तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी, हाँ उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे प्रभावित थे लिटरेचर बंगाली लिटरेचर के
1: जी जी था। जी तो फिल्म दो बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है।
0: जरूर, मैं तो बोलूंगी ये बहुत सच बात है। हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, जैसे फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे
1: जी,
0: इतना उसका प्रभाव था।
1: हाँ,
0: एक इंडियन फिल्म कोई स्टार नहीं उसमें, फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी तो मैं आपको बता ही नहीं सकते, आप वो देखने वाली एक्सपीरियंस करने वाली चीज थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ, वहाँ फेस्टिवल मैंने एक अटेंड किया, और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये
1: जी। तो रिंकी जी, जब बात दो बीघा जमीन की चल रही है तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन लें, आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है।

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: जरूर, मैं बताना चाहूंगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब थे
0: जी,
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाई लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ, तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लिए लायक कोई रोल नहीं था,
0: हाँ।
1: लेकिन ठीक है हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ
0: जी।
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन मीना कुमारी सिंगिंग द लोरी,
0: और ये लोरी और बहुत, हाँ,
1: ये लोरी बहुत, हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए
0: जी,
1: कहाँ पूछे मुझे पता नहीं कौन सा स्टूडियो, शायद दादरा में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह चार बजे
0: रिकॉर्डिंग, तो लता मंगेशकर की गाई हुई लोरी है ये, तो सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग हुई,
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग हुई
0: जी जी,
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी।
0: अच्छा,
1: नेचुरली
0: हाँ,
1: उनका ही गाना है ना,
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगी, मतलब?
1: नहीं नहीं, बहुत टेक नहीं, वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।
0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे, फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे, एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार,
1: और एक चीज, फर्स्ट टाइम साहिल लुधियानवी ने गाना लिखा था उसमें,
0: हाँ जी जी,
1: और एस डी बर्मन
0: साहब का संगीत है, और इतना यूनिक संगीत है, और गाने के बोल जो है आज भी मतलब,
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मित्वा करके गाना है, गीत तो पसंद है, और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है
0: जी जी,
1: उनका जो ये है ना वो सीक्वेंस बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म, और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया, और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है, आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है, फर्स्ट देवदास जब बनी थी पिताजी उसके कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, बड़ुआ के देवदास,
0: जब केएल सहगल साहब जिसमें
1: केएल सहगल थे, पिताजी उसका मेन थे, कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: तो उनको तब से उनको लगता है, और पिताजी का सबसे मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में, हमारे घर में दारू शारू का कुछ ये ही नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक पियक्कड़ के ऊपर
0: जी,
1: लेकिन ये आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर,
0: बहुत शानदार,
1: बहुत सुंदर गाने हैं।
0: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए, कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन बिमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है।

0: जी, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
1: बिल्कुल, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या बिमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है? आप उस वक्त कितनी उम्र की थी और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
0: मेरा उम्र कुछ ज्यादा नहीं था, तब 15 साल की थी। तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारो का अभिनय जो है सुचित्रा सेन
1: जी,
0: उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था।
1: अच्छा।
0: दूसरा, हाँ, वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती थी, उनका शादी हुआ था हमारे घर में
1: जी।
0: तो जब एक दफे वो उनको फिल्म में उतरना था तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग बहुत हंसते थे कि पिताजी को फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा।
1: हाँ।
0: क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं।
1: हाँ।
0: पारो का ये जो किया था,
1: नहीं था।
0: हाँ।
1: वो कोई और कर ही नहीं सकता था, ऐसा बिमल रॉय साहब का मानना था।
0: कोई कर नहीं सकता था।
1: और वो अद्भुत सुंदर लगी है उसमें, और ये पात्र कितना जीवंत हो गया, पारो की भूमिका कितनी मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज भी याद की जाती है।
0: जी,
1: लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के बाद?
0: लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था। लेकिन मेरा हिसाब से पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो समझ जब ये है ना समस्या
1: जो व्यवस्थाएं थी उस वक्त,
0: हाँ, उनको समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है। आज भी कोई मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका जो ये है ना माहौल जो है वो बहुत बहुत इम्प्रेस करता है
1: जी,
0: बहुत ज्यादा
1: जी।
0: और आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंती माला भी जस्ट उसके पहले ही मधुबनी किया था उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थे ना, इसलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
1: बहुत सुंदर है। तो इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे बिमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
0: नहीं नहीं नहीं, पिताजी जो काम करते काम को अलग ही रखते थे वो घर से, हमारा घरेलू जो ये है ना
1: वो अलग था,
0: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को आज तक
1: जी।
0: इतना डिसिप्लिन थे, उनको कहाँ पे कब जाना है क्या करना है सब उनको बहुत पता था। हाँ, तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ कि हमको भी पिताजी का शायद समय बिताने को मिला। हाँ, तो इसीलिए ना कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है, बंदिनी के बाद तो उनका बंद ही हो गया काम
1: जी।
0: हाँ, तो ये बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे
1: जी। जी, तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
0: नहीं, जाते थे, देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है
1: जी,
0: तो देवदास के लिए हमारा हम लोग को जाना ठीक नहीं लगता था, तो पिताजी ने हमको देवदास हमने हॉल में कभी नहीं देखा।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैं बोलती हूँ उसका स्टोरी का तो एडल्ट, उसका एडल्ट इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए उनके लिए जो रिलीज हुई थी मुझे तो याद नहीं कि मैं हॉल में जाकर कभी भी देवदास देखा। मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
1: अच्छा, दूरदर्शन में आपने ही फिल्म देखी होगी। तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें, एसडी बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
0: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
1: आगे तेरी मर्जी जी, बिल्कुल।

0: तो आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था, बच्चे घर में पढ़ाई करना
1: पूरा? पिताजी का ये भी था कि हमको ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाए।
0: अच्छा।
1: हमको लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा कि हम परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया। नहीं तो आज मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी,
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना था। घर से दूर जाना आपको पसंद नहीं था। तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था, प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गूंथे हुए थे।
1: एकदम।
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, और
1: फिल्मी दुनिया में स्पेशली
0: सबसे बड़ी बात है कि फिल्मी दुनिया में रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना, विश्वास करना, सबसे बड़ी बात ये रही थी।
1: और हमारे सामने हम दूसरा फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर घर आना देखते थे। मुझे लगता था कि हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारा घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना। पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे। ही वॉज एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी, हमारे विमल रॉय में विमल रॉय फिल्म का जो लोगो है, कौन सा है आपको मालूम है? कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे।
0: जी जी,
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है टावर है, वो उनका फिल्म का ये है
0: लोगो।
1: तो ये भी कोई सोचने लायक बात है ना।
0: जी जी, जब विमल रॉय की बात हो और सुजाता फिल्म की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम बात करते हैं सुजाता फिल्म की। आपको अपने पिता विमल रॉय की फिल्म जो है सुजाता के बारे में सबसे खास बात तो क्या लगती है?
1: जैसे मैंने बोला कि पिताजी तो लिटरेचर बेस्ड थे ना
0: जी,
1: हमेशा फिल्म बनाने के पहले वो सोचते थे कहाँ से लाए, बंगाली लिटरेचर से। सुजाता के बारे में मैं ये बताऊंगी, एक फेस्टिवल में मैं गई थी, फॉरेन फेस्टिवल, जहाँ पे सुजाता, पिताजी का सब फिल्म से उन्होंने सुजाता को चूज किया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यूरोप में कौन जात पात का कोई ये करेगा, लेकिन मैं एकदम बुद्धू बन गई सोच के। लोग बाहर आ रहे थे सब रोते रोते सुजाता देख के, उनको जो मदर डॉटर का जो है ना, मदर एंड डॉटर का जो ये है रिलेशनशिप है, उसको लेके वहाँ यूरोप में तो एकदम, और सब जो आए थे सब रो रहे थे देख के। तो मुझे ये भी ये खुलासा मिला कि देखो ये भी हमने सोचा नहीं था पहले।
0: इस विषय को उठाने का, सुजाता फिल्म को बनाने के पीछे क्या विचार रहे होंगे आपके पिता के?
1: ये तो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन चूज किया उन्होंने, जरूर अच्छा लगा होगा इसीलिए चूज किया।
0: उस समय बहुत बड़ी

0: समस्या थी, आज भी ये समस्या है, लेकिन उस वक्त इसको उठाना, इस विषय को बहुत ही बोल्ड विषय था और बहुत ही निर्भीक होकर उन्होंने इस बात को आवाज दी कि किस तरह से माँ और बेटी की किरदार को जीवंत किया और इस फिल्म में उन्होंने नूतन को चुना, इसके पीछे क्या कुछ खास कारण?
1: नूतन पिताजी के सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थे
0: जी।
1: नूतन की जो खास फिल्म है सुजाता और बंदिनी, तो पिताजी ने जब बंदिनी पिताजी ने सोचा बनाने का तो नूतन को साइन करने को गए, तो नूतन ने बोला दादा मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छा लगा लेकिन शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगी। तो पिताजी ने बोला क्यों, क्या बात है
0: जी?
1: तो बोले हम प्रेग्नेंट है, तो मैं अभी कैसे, मैं प्रेग्नेंट तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी। तो पिताजी ने बोला कि तब मैं नहीं बना सकूंगी बंदिनी, तो उनका हस्बैंड जो थे उन्होंने उनको उत्साह दिया, बोला विमलदा आप जरा जल्दी जल्दी शूटिंग कर लीजिए तो फिर नूतन आपके साथ काम करेगी। तो वही हुआ बात
0: जी जी।
1: शी वाज प्रेग्नेंट व्हेन शी वाज शूटिंग बंदिनी
0: जी। और उन्होंने क्या लाजवाब अभिनय किया है, अद्भुत अभिनय किया, और उसके बाद तो वो मतलब महान अभिनेत्रियों की एक लाइन में खड़ी हो गई। आप लोग गए इस फिल्म को देखने फिल्मी पर्दे पर?
1: हम लोग गए थे हॉल में देखने के लिए, मुझे याद है यहाँ पे जो ओपेरा हाउस है ना
0: जी,
1: ओपेरा हाउस में रिलीज हुई थी और सिल्वर जुबली किया था।
0: तो चलिए इस फिल्म का कोई गीत सुन लिया जाए,
1: श्योर जरूर।
0: चलिए तो फिल्म सुजाता का एक गीत सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर गीत। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रिंकी जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था जितनी फिल्म की कहानी या फिल्म का किरदार?
1: ऑफ कोर्स, जरूर, क्योंकि पिताजी ने जो पिक्चराइजेशन किया है गाने को, जैसे मुझे तो अभी तक कोई इतना ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर इतना ये करता है, मायने रखता है। बहुत ही अच्छा है, उन्होंने पिताजी का गाने पिक्चराइजेशन एक स्पेशल ये था, उनका टैलेंट था।
0: उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर और ये सभी रहे,
1: उनके पसंदीदा जो थे ना
0: संगीतकार भी एसडी बर्मन और सलील चौधरी साहब।
1: संगीतकार सलील चौधरी या एसडी बर्मन?
0: बहुत सारी फिल्में, ज्यादातर फिल्में सलील चौधरी साहब ने उनकी जो है संगीत में ढाली है, और एसडी बर्मन साहब का तो खैर संगीत हम सुन ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म बंदिनी का जिक्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब फिल्म बंदिनी उन्होंने बनाई तो आप क्या कहना चाहेंगी, फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म की कोई शुरुआत कैसे हुई होगी, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने जब सुना कि पिताजी इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं, वो एक इससे था, एक लिटरी बंगाली लिटरेचर से था
0: जी।
1: तो मैंने जाके मैं उसको रीड किया पहले।
0: अच्छा, हाँ, मुझे इस कहानी को,
1: इस कहानी
0: किताब को,
1: उसकी कहानी को, तो मुझे लगा कि हाँ इससे अच्छा बढ़िया बन जाता है। ये कल्याणी का स्टोरी है, वो जो है ना, जो लिटरेरी जो ये है वो लिखा है जरासंध करके, जिनका नाम था जरासंध, पेन नेम, तो उन्होंने लिखा था, तो उनको जो ये स्टोरीज कलेक्शन था उसमें कल्याणी का स्टोरी पिताजी ने चूज किया था।
0: तो उस वक्त तो उनको ये फिल्म बनाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि उस समय की ये समसामयिक एक कहानी थी, घटना थी। तो आपके पिता जब कलाकारों के साथ काम करते थे तो उनके काम करने की प्रक्रिया क्या रहती होगी, कलाकारों के साथ क्या संबंध रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार रहता होगा, किस तरह से समझाना होता होगा एक डायरेक्टर के तौर पर?
1: हाँ, पिताजी कभी भी एक्टिंग नहीं दिखाते थे किसी को।
0: अच्छा,
1: जैसे राज कपूर है ना,
0: हाँ।
1: राज कपूर हर भूमिका को एक्टिंग करके अपना स्टार को दिखाता है। पिताजी ने बहुत बहुत डिस्टेंस से उनको ये था। उनका एक डायलॉग राइटर था जो बहुत हिंदी एंड बंगाली जो जानता था, उनको पिताजी ने बताया था कि तुम जाके बोलो एक्ट्रेस को, इस नूतन का है तो इतना इतना ये करे, हाँ ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वो डिस्टेंस से करते थे, वो कभी एक्टिंग नहीं दिखाता था
0: जी। तो बंदिनी फिल्म की जो कल्याणी किरदार था नूतन जी का, तो बिमल रॉय ने जिस गहराई से इसे पिरोया, ये बहुत लाजवाब था।
1: हाँ, ऐसा हुआ कि गुलजार प्रोडक्शन में था, बिमल रॉय प्रोडक्शन में ऐसे असिस्टेंट था, तो एक गाने का कहीं जरूरत हुआ तो शैलेंद्र नहीं लिख पाए उसको, तो गुलजार ने उसको लिख दिया, ओपनिंग सॉन्ग ऑफ बंदिनी, मोरा गोरा अंगलैला। अच्छा, तो सुन, तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि तुम गाना भी लिखते हो क्या, तो उन्होंने बोला ऐसे हाँ लिखता हूँ कभी कभी दादा, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम अभी उस जहाँ वो काम करते थे मैकेनिक गैराज, गाड़ी का गैराज में, तो बोले तुम गाड़ी वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में, तुम गाना लिखोगे। तो गुलजार का फर्स्ट गाना पिताजी हमारे प्रोडक्शन में था, हाँ वो था नॉट मोरा गोरा अंगले, वो गाना का रिकॉर्डिंग उन्होंने किया फिर, दैट इज हिज फर्स्ट सॉन्ग फॉर बिमल रॉय प्रोडक्शंस
0: जी।
1: हाँ, पिताजी का बोलने पर फिर वो छोड़ भी दिए, फिर एकदम से ज्वाइन कर लिए।
0: चलिए, तो बंदिनी फिल्म का गीत हम सुन लेते हैं।

0: मैंने जब ये चूज किया स्टोरी कल्याणी की स्टोरी बंधने के लिए, तब मैं पढ़ने को गई तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसा कोई एक स्टोरी है जिसमें किसी ने जेल से आके लिखा है, उसका केस हिस्ट्री था, ये रियल केस हिस्ट्री, हाँ, तो इसीलिए बहुत इसका बहुत माने रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस वक्त ये एक बहुत सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। तो वही हम मधुमति के बारे में भी बस यही जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म से संबंधित ये फिल्म थी।
0: मधुमति का अलग ही बात है, क्योंकि मधुमति का जो मधुमति लिखा गया था खाली पिताजी का प्रोडक्शन के लिए लिखा गया था, वो कोई लिटरेरी वे नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: उसको क्लेम करते हैं ऋतिक घटन ने लिखा था, पता नहीं, लेकिन वो लिखा था पिताजी के लिए।
1: लेकिन वो बहुत उस जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
0: वो तो है,
1: हाँ,
0: बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, बिकॉज ऑफ ऑल द कास्टिंग, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, बहुत बढ़िया। ये पिताजी ऐसे बनाए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तभी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था, तो किसी ने बोलता है कि दादा आप इतना फिल्म बना रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्शन का नहीं देख रहे, तो प्रोडक्शन ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इतना खर्चा, पिताजी खर्चे का देख नहीं थे, देख भी नहीं थे कि क्या था। तो जब उन्होंने बोला तो पिताजी ने बोला ठीक है मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिसमें सब कुछ है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है, विलेन, हीरो, हीरोइन, हाँ,
1: वो तो, सब था जो एक फिल्म में होना चाहिए,
0: वो जो था वो सब फिल्म में होना चाहिए, तो मधुमति उसी हिसाब से बना गया।
1: जी, तो वो जो गाने पूरे इतने सुपर डुपर हिट हुए, घर घर में वो गाने बजने लगे, क्या आपके घर में भी रेडियो था उस वक्त? आप गीत संगीत तो सुन सकते थे, ये माहौल तो था घर में। तो चलिए हमारे श्रोता उन्हें गीत हम सुना देते हैं आपके।

0: आपके सुंदर गीत हमने सुने. और रिंकी जी, आप उनकी बड़ी पुत्री हैं, आपने पिता को बचपन से फिल्मकार के रूप में देखा है, फिल्में बनाते हुए देखा है. एक पुत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस विरासत को आप किस ढंग से संभाल रही हैं आज तक?
1: मैं इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पिताजी का जो फिल्म है उसको रीइशू
0: जी,
1: उसको रिस्टोर करना. तो मैंने काफी एक यहाँ पे है रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमने 4 फिल्में तो अभी रिस्टोर करने के लिए दे दिया है. वो भी अभी न्यू DVD बन के आ जाएगी अभी. तो हो गया है 4 फिल्म की
0: जी
1: बात है.
0: कौन सी फिल्में हैं वो?
1: मधुमती, देवदास
0: जी,
1: बंदिनी और 2 बीघे जमीन
0: जी,
1: ये 4. इधर है एक जो रिस्टोरर है शिवेंद्र डूंगरपुर करके.
0: अच्छा.
1: तो शिवेंद्र ने इसको किया है, रिस्टोर किया है. 4 फिल्में टेक्स्ट चेयर समटाइम ये सब फिर से दोबारा आ जाएगी. DVD नया DVD आ जाएगी.
0: अच्छा,
1: सबकी. हाँ
0: जी, बहुत बड़ी इस विरासत को आपने संभाला है और इसे जीवंत बनाए रखा है आज तक. तो रिंकी जी, आपको अपने पिता की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी?
1: ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है
0: जी.
1: मुझे तो अभी भी मधुमती देख, कभी भी मैं देखती हूँ ना मधुमती, तो मुझे लगता है कि देखते ही रहूँ.
0: यू नो,
1: इतना उसका असर है. और एकदम मैं ऑडियंस ही बन जाती हूँ.
0: हाँ,
1: ये तो मधुमती के साथ है. दो बीघे जमीन देखने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि ट्रेजिक है. हाँ, लेकिन जैसे ये दोनों फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है, मधुमती और दो बीघे जमीन.
0: कभी आपको लगा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती और आगे चलकर एक बहुत बड़ी फिल्मकार बनती और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण या निर्देशन करती जैसे मेरे पिता ने उस वक्त किया?
1: नहीं, ये कभी नहीं आया. बल्कि मैंने अभी तक मैंने

0: सोचा ही नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसीलिए इसी डर से कि मेरे को कोई कंपेयर करेगा पिताजी से।
1: अच्छा।
0: इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है फिल्म, और जो बनी है वो एक्सीडेंटली बन गई है
1: जी। तो उन फिल्मों के बारे में आप हमें बताइए जो जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बनाई है आपने।
0: मैंने दो ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक है डोमेस्टिक वायलेंस पे, क्योंकि मैंने औरतों के साथ बहुत सारा काम किया है एनजीओ के साथ
1: जी,
0: तो उसको बनाया है बिहाइंड क्लोज डोर्स करके, और बस ये एक फिल्म है मैं जिसके बारे में बोलना चाहूंगी
1: जी,
0: कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है, वो वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री, वो फेस्टिवल्स में भी गई है और इसको लेके लोग देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं, डीवीडी में है वो।
1: इस फिल्म में जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके बारे में आपने काफी, और आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है, काफी लंबे समय तक आप सोशल वर्कर के रूप में काम करती रही हैं, बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी किताबें कौन कौन सी थी, आपने किन किन विषयों पर ये किताबें लिखी।
0: मैंने ज्यादातर किताबें लिखी और वुमेन्स इश्यूज को लेके, और दो एक पिताजी पे लिखा है, दो एक मेरे पास दो किताबें हैं, जो एक तो है मधुमती खास, मधुमती का क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है
1: जी,
0: वो पब्लिश हुआ है, और एक किताब है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के बोला ना मैं बिहाइंड क्लोज डोर, ये दोनों बहुत खास है।
1: इनका रिएक्शन आपको कैसा मिला जब ये किताबें दुनिया की समक्ष गई लोगों की, खासतौर से महिलाओं का?
0: बहुत अच्छा, इट इज वेरी बिग, ये लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाए इसका
1: जी, कई भाषाओं में।
0: हाँ, कई भाषाओं में ट्रांसलेशन है।
1: आपको कहीं ना कहीं ये दबाव रहता होगा कि पिता से कंपेयर करेंगे, तो क्या ऐसी मानसिक स्थिति में भी आप दबाव में रही?
0: नहीं नहीं, मैं दबाव में नहीं थी, मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने कॉन्शियसली मैंने ऐसे किया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लोग तो मुझे कंपेयर करेंगे ही ना पिताजी से, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए फिल्में। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था, वो मुझे करना ही था, क्योंकि उसको लिए मेरे फंडिंग मिली, गवर्नमेंट फंडिंग।
1: अच्छा।
0: हाँ, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तो इसीलिए मुझे पैसा भी मिला था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया, और नहीं तो मैं फिल्म के लिए मैं कुछ आग्रही नहीं थी इतना। मैं कॉन्शियसली पिताजी का जो आइडियल्स है, उनका जो ये है फिलोसफी है, उसको फॉलो करने का मैं कोशिश करती हूँ।

0: किताबें हैं, सिनेमा है और बिमल रॉय की विरासत है, को एक वाक्य में देखना हो तो आप क्या कहेंगे कि आप वास्तव में किसकी आवाज दर्ज कर रही हैं, फिल्म की, स्त्रियों की, परिवार की या उन लोगों की जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है?
1: आपने जो कहा ये बहुत सही बात है, जो जिसका आवाज दबा दिया गया है ना, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम, जो वॉइसलेस है उनके बारे में मेरा ये हमेशा कोशिश रहा कि मैं उसी को ये करूं।
0: जी, और उसमें आप लगी हुई हैं आज भी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी आप लगातार अपनी इस यात्रा को बनाए हुए हैं। रिंकी भट्टाचार्य जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों के अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: ट्यूशन जिन्हें कहे, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: बिल्कुल।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।